0: चेतव खुलिंचिन कागैते था साइलन बबे था कसर था नोग तिनो थोशीने लगो युएक्के बई में तिनो अगिन डोकी गूरनों वल्डों पौर मीतन इन गुने नो न बाकी बई तीन गैश बापरो रफेलिक्स कोसके कनी से तिन बाकी तो बेन एची सी न मीतन इन बामे ते सेंट्रोलिन साउथ की बबे तू था ब्रानिया के गौर था न बई बई चिन के निशार था मको एरिया डायरेक्टर डेविड कोहेश नोएंडे का मुंगे थे कई तथा कनी साना तन कांडो इन नो तन उन्होंने तो सेट को बुना बीएस न बो पार्लियामेंटरी सर्विस ऐसा आउरेलिया रोनो आगे कांडो इकल के बापामेंट तेसे था ये इन गुनी लबाते तिनों बो बेल को था मराडोन नेगिया इन काउंट तिनों बो किरिचा गुंडो इचिन में बात हाव कौन इग्नों तिनों तू तिनों बो बेल को था नेल्सन कोएश मीतने इन लबातानो तन कांडो इके चांग कबो तन गी नमु लबाते तिनों बो मराडोन एलियो डे किपचोगे कबो तर वाई का लगे इसे चांग लबातानो तन कबो तन बो किलोमीटर इशक तुप तमा गेंगे तमन आ किलोमीटर इशक मुंता को बेंदे को न्योर सिंगे कबेले गे कोनो नो थाई के थेर थेर Kago isha kondo inda tinubo kibagin gaiti nubo bulati tinubo linda mana inji agu ina inda takura ako seneta nubo Nairobi Edwin Sifuna lugu iki moegi lipo ishi na nagi president tinubo angwa nuru Kenyanta kondo iki bo kibibaratanishi lipo ishi ni kibo serikali kumurita serikali tinubo president William Ruto in lugu iki oimo kondo inda notan kama ule matindo iman dagetu lugu iki otan kimoito in kondo inda notoka Kagundri came about how Kona Gunting or Tooting and the boy Shangamwe Omar Mwini, Alagin Kibagin Kashiki Bershing Ekabit Manda and the boy Kip Kosome, Agobaman and Gamole, Chutina Poishonike, Chimanamege, Ak Poishonikwake, Kumuli in Shangamwe, Komami Nigule, Kigo Tor, Chige, Kutni Singer, Kibagin Kashi Jotan Pulato Shaga, Aga, Kando, Anana, Kando in a Teta, Nagota Bershing Ekabit Manda, in Kasarta, Agatugula. Kagundri ke seneta nagigi turor Veronica Maina kondu inde tinu bai chama itinu ba DC bere ka de kashan kwa ko sub kagilgo ek ba sosisie te chwa mai tain kondu ik ko ni ke bunu kaun tinu ba muranga onalin kange ma ko cher maina ko ni gen kaun tinu tan ko gi mi to no ni wana go slaine iman dai wana ba ko loin kondu ik mo kingen lo ni shetno ni mi tin thai chotun kwa lagi lugo ek bai me te gi subya subit ke bunen kondu do site sabaki urenon waldon por
1: John Kogalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet Eldama Ravine Kabarto

अगर गईते सुई तई को अश्य गए अगते सुई तई को अश्य गए गो डैडी गतो मेल टिकट के तिति एल टिकट तिति बियम पियो गतो मेल टिकट एल टिकट तिति बियम पियो टिकट नंबर 6 से नॉट नंबर 4 दा नंबर 150,000 स्टार 274 हैश तई को अश्य गए स्टार 274 हैश